मुखी वालम रास्ते गुलसोया कोई राजा राजा जगा तो रमा जतो सही दयारो अबाना पटावता एल सोया जाइए चंबला